सारी तारीफ जो हम कर रहे हैं, बस ये कहेंगे कि दुनिया को जीना सिखाने वाले तुम पे मर रहे हैं।

बैठे, चांद को चाह बैठे, कौन होगा हम सब पागल जमाने में, दिया जलाने लगे थे, घर जला बैठे।

0: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।
1: शेख ये बात ही गया।

0: Cultures Connect. CJMR 1320, the voice of the city.
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

में गाँव है रेला, ऊंचा पाँव यू पटका है ये देसी मेला। कैसा रहा यकायकी, नाचो नाचो नाचो नाचो। अरे धूम धूम थिरके जा, पाँव में जान जगा, धुमक धुमक ना।

दाढ़ी ना दिखाओ। गलत है सब पर लगे है सही, आंखें बंद कर डरेगी तो नहीं, जो भी मैं बोलूंगा करेगी तो वही, जहां तूने छुआ मुझे वहां तो गई।

तारीफ जो हम कर रहे हैं, बस ये कहेंगे कि दुनिया को जीना सिखाने वाले तुम पे मर रहे हैं।

बेगदर यार बोले दे खबर मैं दुनिया से बेखबर ए खुदा मुझे दे सबर तू साथ है तो किसका डर वो देता है दिल में घर तो क्यों इतना बेसबर जिंदगी खेल नहीं ये सिर्फ एक तमाशा है कितनों को जेल हुई जुर्म में इजाफा है हम आना के देर हुई इस कलम से वादा है।

0: कोई कैसे महफूज है मेरा सवाल किसी का उरूज
1: सर बे सर बावफा तो बेगदर यार बोले दे खबर मैं दुनिया से बेखबर ऐ खुदा मुझे दे सबर तू साथ है तो किसका डर वो देता हर दिल में घर तो क्यों इतना बेसबर असर बेअसर बावफा तो बेगदर यार बोले दे खबर मैं दुनिया से बेखबर ऐ खुदा मुझे दे सबर तू साथ है तो किसका डर वो देता हर दिल में घर तो क्यों इतना बेसबर।

दो जलने दो, जमाने को जलने दो, बदले की आग में उसको भी मरने दो, जलने दो जलने दो, जमाने को जलने दो, बदले की आग में उसको भी मरने दो।

ज्यादा ना सुना कर उनकी, तू ज्यादा ना सुना कर उनकी, बस अपने ही किया कर मन की, बस अपने ही किया कर मन की। देख तुझे जलती है जिनकी, हाँ देख तुझे जलती है जिनकी, क्यों फिक्र करें, क्यों फिक्र करें फिर तू।

ठंडक आता माझी सटक सटक बम तेरा गोते खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कमों बेबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़, I am the baddest motherfucker।

है सदियां खुशबू का दर है, ये शहर मोहब्बत मेरा हम सफर है, केसर के रंगों को ओढ़े है शब भर, है दिलचस्प बातें है दिलकश ये मंजर, जो मांगी दुआ में मन्नत यही है, सच तो

सफर तू बता मुझको चलना किधर है मुझको तलब खुद से मिलना किधर है जो मांगी दुआ में मन्नत यही है सच तो है दुनिया की जन्नत।

0: जब करेगा दुआ कोई यार के लिए खुदा भी टाल देगा, जब होगी बात बेवफाई की जग तेरे मेरे इश्क की मिसाल देगा, जग तेरे मेरे इश्क की मिसाल देगा।
1: Your voice, your community, your culture. This is CJMR 1320.

चले तो ले ले पूरा दिन, हो तैयार तो घंटे न गिन। मैं हूँ यही एक्स सर्विस, टेक योर टाइम शॉरी यू डिजर्व इट। हाथ मेरा थाम, लेट मी मेक यू स्माइल, आई लाइक योर स्वैग, यू लाइक माय स्टाइल। देती मुझे विंडो सीट, खुद लेती आल। जब भी होती लो तो मेरा नंबर कर डाल। मैं हूँ तेरे साथ, तू है मेरे संग साथ। तेरे साथ टाइम की खबर न लगे, किसी भी चीज में कसर न लगे। मांगू दुआ यही नजर न लगे। बेबी ऐसे है मत, कर हमें क्या मत, तू मुझको मिली है, ये है मेरी किस्मत।

0: It's a GR music.
1: जब तू साथ नहीं होती, तड़पता मेरा दिल है। मेरी रग रग में लहू के साथ साथ तू भी शामिल है।

0: where cultures connect. CJMR 1320, the voice of the city.
1: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: ओ भाई बीटी मत दे, लाइन दे।
1: अंडा नॉनवेज नहीं होता और बियर दारू नहीं होती।
2: Your home for culture, community and unity here on CJMR 1320.